नमस्कार तिसहि को हमारी सकल प्रजा दिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो घट घट के अंतर की जान।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जा मुद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब हीते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंब। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ता कौ कर पाहन अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सिव, निरंकार का चीन।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो, जे को खावे जे को पुंचै तिसका हुए उदारो। यह वस्त तजी नह जाई नित नित राखे और तारो, तम संसार चरण लग तरिया।

फिरंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आए घर नौने दया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय।

0: सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सके को तू कद का ब्रह्मा विष्णु सिरे तय अगंत तिनको मोह पया मन मद का 84 लाख जोन उपाई रिजक दिया सभु को तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका 84 लाख जोन उपाई रिजक दिया सभु को तद का सेवक कै भरपूर जुग जुग वाहा गुरु तेरा सब सदका।
1: वाहो वाहो का बड़ा तमाशा आपे हसे आप ही चितवे आपे चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थम

0: परमारथ सत्संगत से ती मन खचना किया खेल वड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना गुर प्रसाद पाये परमारथ सत्संगत से ती मन खचना किया खेल वड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना।
1: वाहिगुरु जी अगम अन...

जग वाहिगुरु नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना चसै श्री सतनाम करता पुरख

0: पुत्र को तिन त्रास कहा। जो चरणन गुर चित लावत हैं, मथुरा पन भाग पले उनके, मन इच्छत ही फल पावत हैं। रव के सुत को तिन त्रास कहा। जो चरणन गुर चित लावत हैं।
1: निर्मल नाम सदा परपूरन, शब्द तरंग प्रगत तिन आगर, गहर गंभीर अथा अत बड, सुपर सदा सब विदरत नागर। संत मराल करै कंतूहल, तिन जम

सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चटीऐ तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीऐ सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदे साह जिस पास बैठिया सोहीऐ

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न होवई।

0: नंगियाना में समस्ती स्वरूपे
1: भंगी परमाथे समस्ती प्रभुते
0: कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे
1: नमो राजर्जेश्वरम परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
1: नमो राजर्जेश्वरम परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
1: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते
1: नमो जोग जोगेश्वरम परम

0: अष्टांगसेनानी
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
0: नमो इष्टि इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
1: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासि
0: अरूपे अरूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद्धकर्ता
0: अधो ऊर्ध्व अर्धं अंगं हर्ता
1: परं परं परमेश्वरं प्रोक्ष पालन
0: सदा सर्वदा

0: चक्कर फिरे चतर चटमान ये पुरतीन।
1: लोग चौदह के बिखे जग जाप ही जे जाप।
0: देवनाथ मुरत थाप्यो सबे जे थाप।
1: परम रूप नीत मुरत पूरण पुरख पार।

0: मेघ पुरख पार,
1: सर्वराज सर्व काज सर्व को पितपार,
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख,
1: शास्त्र रा जानिए जय रूप रंग और रेख,
0: परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित,
1: सिमरत प्राण शास्त्र ना आवि।

के कारण को निंदा करो जिंदा के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र गौण

0: दान सो संजम नेम अनेक बिसेके
1: वेद पुराण के देव कुरान के बीन जबान जबान के देखे
0: पौन आहार जति जत थार सब सो विचार हजार के देखे
1: श्री भगवान पजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेखे
0: सुद सिपा दुरंद दुबा सो साज सना दुर्जान दलेंगे
1: भारी गुमान परे मन में।

0: परेशान फिरे जग सतर सवे अब लोग जपेंगे।
1: मानव इंद्र गजेंद्र निरात्र पर जोन त्रिलोक को राज करेंगे। ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जम

0: कंस करा पूरन सब राता
1: कभी सकल देख को हरता दोस्तों क्यों को छे करता
0: सी यश जब दे रियाला पूरन करा कंत काला
1: मन बादशाह फल पावे सोए दुख न तिसे व्याप्त होए
0: स्नेह जो यास रस न पावे स्नेह मोट लचतता आवे।

0: शब्द कनेरे
1: कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे
0: सच्चा नाम मेरा आधारो
1: साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
0: किसान सुखमना जिन इच्छा सब पुजाइया
1: सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया
0: नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो
1: वाजे पान सबद तितकार सवागे कार सवागे सबद वाजे कला चितकर तारिया
0: पंच दूर तुरवस कीते काल कंटक मारिया
1: तो करम पाया तो जिनको से नाम

0: है प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारी
1: मानो क्यों विसारी वरदाता जी अगन में हाथ पहुंचावे
0: अपनी
1: लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिए जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया
0: अगर सब एक तो जही करता खेल रचाया
1: जत इस पाना था जमया परवार पल्ला पाया
0: लगी तृष्णा माया अमर बरताया
1: ए माया जितर विसरे मोह उपजे बाव दू चलाया हर आप मुल कै मुल न पाया जाए ऐसा सतगु जे मिले तिसनु सिर सौंपिए विचो आप जाए।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौने दे आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ते अंतर के। बोलो जी पंजां प्यारियां चौं साहिबजादियां चालियां मुक्तियां।

चक्र चेहन अर बरन जात अर पातन हैन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के हे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजै त्रिपवन महीप

गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।